आप ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। जापानी वजीर आजम ताकाइची सनाए ने अपनी पार्टी के मुंतजमीन आला को बताया है कि वो अप्रैल से आइंदा 2 साल के लिए अशियाए खुर्दोनोश पर सारिफ टैक्स कम करके 1% करने का

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 30 जुलाई बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर के अधिकारियों का कहना है कि प्रीफेक्चर में आए भूकंपों में 34 लोगों की मौत हो गई है। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी मौत संभवतः आपदा संबंधी कारणों से हुई। बचावकर्मी जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं, इसलिए ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। कुमामोतो प्रीफेक्चर में आए भीषण भूकंप की तीव्रता जापान के 0 से 7 के भूकंप मापी पैमाने पर 7 दर्ज की गई। मौसम विज्ञान एजेंसी ने इस आपदा को 2026 कुमामोतो भूकंप नाम दिया है। एजेंसी का कहना है कि मंगलवार को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद से बृहस्पतिवार दोपहर 2 बजे तक प्रीफेक्चर और आसपास के इलाकों में कुल 270 झटके दर्ज किए गए। इनमें मंगलवार को आया 7.1 की तीव्रता का भूकंप शामिल नहीं है। एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार भूकंपीय गतिविधियां काफ़ी अधिक बनी हुई हैं और अब तक 5 निम्न की तीव्रता के 4 झटके और 4 की तीव्रता के 14 झटके आ चुके हैं। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि भावी भूकंपों के स्थान और तीव्रता के आधार पर तेज झटके महसूस किए जा सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार अगले 1 सप्ताह या उससे अधिक समय तक, विशेषकर अगले कुछ दिनों में, बड़े झटकों का खतरा बना हुआ है। इस बीच प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और जल की आपूर्ति अब भी बाधित है। 6 की तीव्रता का भूकंप झेलने वाले यात्सुशिरो शहर में बृहस्पतिवार सुबह से ही कई लोगों को पानी के टैंकरों के सामने कतार लगाए देखा गया। 70 से अधिक उम्र की एक महिला ने कहा कि परेशानी काफ़ी है, नहाने या मुंह हाथ धोने तक का पानी नहीं है। वहीं 40 से अधिक उम्र के एक व्यक्ति का कहना था कि कपड़े धोने जैसे रोज़मर्रा के कामों के लिए और यहां तक कि पीने के लिए भी पानी नहीं है और पर्याप्त भोजन भी नहीं है। एक विशेषज्ञ का कहना है कि मंगलवार को दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर कुमामोतो के एक शॉपिंग मॉल में भीषण विस्फोट उस दिन प्रीफेक्चर में आए तगड़े भूकंप के बाद मॉल में शायद ज्वलनशील गैस जमा होने से दबाव बढ़ने के कारण हुआ होगा। गौरतलब है कि ये विस्फोट काशिमा नगर के ईयोन मॉल कुमामोतो में हुआ। टोक्यो विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर मोगी तोशियो का कहना है कि जांच पूरी होने तक विस्फोट के कारणों के बारे में ठीक से कहा नहीं जा सकता, लेकिन मॉल में शायद प्रोपेन जैसी ज्वलनशील गैस जमा होने के बाद उसमें आग लग गई होगी। प्रोफेसर मोगी ने कहा कि किसी मकान के कमरे में विस्फोट होने की स्थिति में खिड़कियां तो टूट जाती हैं, लेकिन दीवारें खड़ी रहती हैं। उनका कहना है कि मॉल में खिड़कियां बहुत कम थीं और ऐसे में गैस का दाब इतना बढ़ गया होगा कि दीवारें ढह गईं, क्योंकि गैस को बाहर निकलने का रास्ता बहुत कम मिला। मोगी कहते हैं कि मॉल में पहली से दूसरी मंजिल तक फैली एक बड़ी खुली जगह थी और इतनी बड़ी जगह में इतनी अधिक मात्रा में गैस का जमा होना और उच्च दाब बनना असंभव है। मोगी को लगता है कि पीछे किसी कमरे जैसी बंद जगह में गैस का रिसाव हुआ होगा जिससे विस्फोट हुआ।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए ने अपनी पार्टी की कार्यकारिणी को बताया है कि वो अप्रैल से शुरू होने वाले 2 वर्षों के लिए खाद्य पदार्थों पर उपभोग कर को घटाकर 1% करना चाहती हैं। इस योजना में निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए भत्ते भी शामिल हैं, जिनसे ये कर एक तरह से शून्य हो जाएगा। बृहस्पतिवार को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी LDP की मंडल बैठक में ताकाइची ने इस योजना को सर्वोत्तम उपाय बताया। ये योजना LDP कर प्रणाली अनुसंधान आयोग के अध्यक्ष के हालिया प्रस्ताव पर आधारित है। ताकाइची ने पार्टी कार्यकारिणी को निर्देश दिया कि वो अगस्त की शुरुआत तक पार्टी के भीतर आम सहमति बनाने की दिशा में काम करे। LDP मुख्य रूप से अपनी कर समिति में आम सहमति बनाने के लिए चर्चा जारी रखेगी। बुधवार को ही बैठक में प्रधानमंत्री और अन्य दलों के नेताओं के बीच कर कटौती पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बजाय उन्होंने विभिन्न दलों के रुख को सूचीबद्ध किया। वरिष्ठ अधिकारियों सहित LDP के कुछ सदस्य अब भी कर कटौती का विरोध कर रहे हैं। जापान सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दुष्प्रभावों का हवाला देते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए अपने आर्थिक विकास अनुमान में कटौती की है। मंत्रिमंडल कार्यालय ने मार्च 2027 में समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपना नवीनतम अनुमान बृहस्पतिवार को जारी किया। सकल घरेलू उत्पाद GDP में मुद्रास्फीति को समायोजित करते हुए लगभग 0.9% की वृद्धि होने की उम्मीद है। ये पिछले साल दिसंबर के लगभग 1.3% के अनुमान से 0.4% अंक कम है। कार्यालय का कहना है कि कच्चे तेल की उच्च कीमतों के कारण खाद्य पदार्थों और माल की लागत बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है। NHK को पता चला है कि जापान सरकार दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी देश नामीबिया में दुर्लभ धातु खनन परियोजना में 5 अरब येन यानी लगभग 3.6 करोड़ डॉलर तक का निवेश करने की योजना बना रही है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि जापान का प्रमुख ट्रेडिंग हाउस टोयोटा त्सुशो इस परियोजना के लिए एक कंपनी का नेतृत्व करेगा। ये निवेश सरकार से संबद्ध जापान ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेटल्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी के माध्यम से किया जाएगा। नामीबिया की खानों में डिस्प्रोसियम के विशाल भंडार हैं, जो शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए आवश्यक है। इनमें इट्रियम भी पाया जाता है, जिसका उपयोग स्मार्टफोन में होता है। जापान और नामीबिया की सरकारों ने फरवरी में दुर्लभ धातु खनिजों के खनन प्रयासों पर चर्चा करने पर सहमति व्यक्त की थी। इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों के निर्माताओं के लिए ऐसे खनिज अपरिहार्य हैं। जापान दुर्लभ धातु खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में भी विविधता लाने के प्रयास कर रहा है, क्योंकि शीर्ष उत्पादक चीन निर्यात नियंत्रण कड़े कर रहा है। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।